आकाशवाणी पुणे गायक वृंद ने गाई रचना आपने सुनी समूह स्वर में। श्रोताओं अब हम सुनाने जा रहे हैं मनोहर सबनिस के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना।

श्रोताओं, मनोहर सबनिस के स्वर में आप सुन रहे थे संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना। आइए कार्यक्रम के अंत में अब सुनते हैं मधुकर कुलकर्णी की रचना अंजनी केळकर के स्वर में।

अंजलि कैकर ने गायी हुई मधुकर कुलकर्णी की इसी भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब हम समाप्त कर रहे हैं। यह कार्यक्रम आप सुन रहे थे रागम 24/7 DTH चैनल पर। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। सुनते रहिए भारतीय संगीत, हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग भाटियार में ख्याल गायन. कलाकार हैं पंडित संदीपन समाजपति. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्रनाथ चक्रवर्ती. तो ये प्रस्तुत है राग भाटियार में ख्याल गायन. कलाकार पंडित संदीपन समाजपति.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस मॉर्निंग वी फर्स्ट प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी फोकल रेंडिशन. Listen to a khayal in Raag Bhatiyar. Our artist this morning, Pandit Sandipan Samajpati. Accompanying on the tabla, Pandit Sujit Saha. And on the harmonium, Rathindranath Chakraborty. Now, listen to a khayal in Raag Bhatiyar by our artist, Pandit Sandipan Samajpati.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भाटियार में ख्याल सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित संदीपन समाजपति। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित सुजीत साहा और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग जौनपुरी में सितार वादन। आज के कलाकार हैं अंजन साहा। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय। तो लीजिए प्रस्तुत है राग जौनपुरी में सितार वादन, कलाकार अंजन साहा।
1: You are listening to a khayal in Raag Bhatiyar by our artist Pandit Sandipan Samajpati, accompanying on the tabla Pandit Sujit Saha and on the harmonium Rathindranath Chakravarti. This is Raagam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a sitar recital in Raag Jaunpuri. Our next artist Anjan Saha, accompanying on the tabla Tarun Roy. Now, listen to a sitar recital in Raag Jaunpuri by our artist Anjan Saha.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जौनपुरी में सितार वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे अंजन साहा। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a sitar recital in Raag Jaunpuri by our artist Anjan Saha, accompanying on the tabla Tarun Roy. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Raagam, 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, आपने ट्यून किया है रागम 24/7 DTH चैनल. आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत. सुनते हैं ठुमरी दादरा और टप्पा गायन. प्रारंभ में सुनते हैं पंडित छोटा गंधर्व द्वारा प्रस्तुत दादरा. बोल है, मोरे राजा वड़िया खोले रस के बूंद न पड़े. साथ संगत हारमोनियम श्री राम शाहपुरकर, तबला चंद्रकांत कामत और वायलिन फैयाज हुसैन. तो आइए सुनते हैं पंडित छोटा गंधर्व द्वारा प्रस्तुत दादरा.

अभी आप सुन रहे थे पंडित छोटा गंधर्व द्वारा प्रस्तुत दादरा। आपके साथ हारमोनियम पर थे श्रीराम शाहपुरकर, तबले पर थे चंद्रकांत कामत और वायलिन पर फैयाज हुसैन। और अब सुनते हैं पंडित छोटा गंधर्व द्वारा प्रस्तुत ठुमरी। बोल है कहेरी ननदिया भरे बोल। सत्संगत हारमोनियम श्रीराम शाहपुरकर, तबला चंद्रकांत कामत और वायलिन फैयाज हुसैन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित छोटा गंधर्व द्वारा प्रस्तुत ठुमक। आपके साथ हारमोनियम पर थे श्रीराम शाहपुरकर, तबले पर थे चंद्रकांत कामत और वायलिन पर फैयाज हुसैन। और अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए रहे विदुषी सिद्धेश्वरी देवी द्वारा प्रस्तुत मिश्र पीलू राग में ठुमरी। बोल है श्याम मोरे गली आना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विदुषी सिद्धेश्वरी देवी द्वारा प्रस्तुत मिश्र पिलू राग में ठुमरी, और अब सुनते हैं विदुषी सिद्धेश्वरी देवी द्वारा प्रस्तुत टप्पा। बोल है माहेरा बालम आना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विदुषी सिद्धेश्वरी देवी द्वारा प्रस्तुत टप्पा। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी। आगम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है मुजाहिद हुसैन खां का गाया राग पूरिया कल्याण. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं आज सो बना ब्याहन आया, और द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं मोरे घर आजा. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने, और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. We now have for you a vocal recital by Mujahid Hussain Khan. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak and on the harmonium by Ashok Kumar. Mujahid Hussain Khan first presents rag Puriya Kalyan, in which you will hear the Vilambit Khayal set to Ektal, and this will be followed by the Chota Khayal set to Drut Teen Tal.

0: अभी आप मुजाहिद हुसैन खां का गाया राग पुरिया कल्याण सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने। और लीजिए अब सुनिए राग मालकौंस। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं पीर न जानी बलमा, और तराना तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग पुरिया कल्याण। कंटिन्यूइंग विद हिज वोकल रिसाइटल, वी नाउ हैव मुजाहिद हुसैन खान presenting Rag Malkons, in which you will hear the Bada Khayal set to Vilambit Ek Taal, followed by a Tarana set to Teen Taal.

0: अभी आप मुजाहिद हुसैन खां का गाया राग मालकों सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने और हारमोनियम पर अशोक कुमार ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग मालकोंस वी कम टू द एंड ऑफ द वोकल रिसाइटल बाय मुजाहिद हुसैन खां। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक एंड ऑन द हारमोनियम बाय अशोक कुमार। दिस प्रोग्राम वाज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं सुंदरी वादन। कलाकार है यशवंत जाधव। आपने सुंदरी पर प्रस्तुत किया राग हंसध्वनि सुनते हैं। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है शंकर कुंभार। तो आइए सुनते हैं सुंदरी पर राग हंसध्वनि, कलाकार यशवंत जाधव।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुंदरी पर राग हंस ध्वनि। आपके साथ तबले पर थे शंकर कुंभार। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सुंदरी पर राग मदमात सारंग, कलाकार यशवंत जाधव। लंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है शंकर कुंभार। तो आइए सुनते हैं सुंदरी पर राग मदमात सारंग, कलाकार यशवंत जाधव।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुंदरी पर राग मदमात सारंग। कलाकार थे यशवंत जाधव। आपके साथ तबले पर थे शंकर कुंभार। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की मिति थी। रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन. आज ही कलाकार हैं शाश्वती बागची. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शौमेन सरकार और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं हिरण मोय मित्रा. तो लीजिए प्रस्तुत है राग शुद्ध कल्याण में ख्याल गायन. कलाकार शाश्वती बागची.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. This evening we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen to a khayal in the rag Shuddh Kalyan. Our artist is Shashwati Bagchi. Accompanying our artist on the tabla is Shomen Sarkar and on the harmonium is Hiranmoy Mitro. Listen now to khayal in the rag Shuddh Kalyan. Our artist Shashwati Bagchi.

Sarega,

0: अग्निम प्रसाद दे रहे हैं रतन नट्टो। तो लीजिए प्रस्तुत है तीन ताल में तबला वादन, कलाकार समित भट्टाचार्य जी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ ख्याल इन द राग शुद्ध कल्याण। अवर आर्टिस्ट वॉज शाश्वती बागची। अकम्पनिंग अवर आर्टिस्ट ऑन द तबला वॉज शोमन सरकार एंड ऑन द हारमोनियम वॉज हिरणमॉय मित्रो। दिस इज रागम 24/7 on DTH, anytime, Indian music. Continuing the concert, we now present a tabla recital. Listen to the tabla in Teen Taal. Our artist is Shomit Bhattacharya. Accompanying him on the harmonium is Ratan Natto. Listen now to the tabla in Teen Taal. Our artist, Shomit Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल में तबला वादन सुन रहे थे। कलाकार थे समित भट्टाचार्य जी। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रतन नट्टो। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a tabla recital in Teen Taal. Our artist was

0: विद्वान श्री वाराणसी काली प्रसाद बाबू अपने मृदंगम लय विन्यास का समापन मिश्र चापू ताल से कर रहे हैं।
1: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू कंक्लूड्स हिज मृदंग लय विन्यासम विद मिश्र चापू तालम।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी ख्याल गायन, कलाकार थे वसंत राव देशपांडे, संगत कलाकार थे तबले पर सरवत हुसैन और सारंगी पर लतीफ अहमद। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी ख्याल रिसाइटल बाय वसंत राव देशपांडे। द अकॉम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय सरवत हुसैन ऑन द तबला एंड लतीफ अहमद ऑन द सारंगी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन. कलाकार हैं पंडित नरेंद्र नाथ धर. राग है जौनपुरी. आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप जोड़ और दो गतें. विलंबित गत और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है. संगत कलाकार हैं तबले पर राम कुमार मिश्रा. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर. द रेंडेशन कमेंसेस विद द राग जौनपुरी. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय राम कुमार मिश्रा ऑन द तबला.

आप सुन रहे हैं सरोद वादन, कलाकार हैं पंडित नरेंद्र नाथ धर। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे पंडित नरेंद्र नाथ धर से राग रागेश्री में आलाप और दो गते, विलंबित गत और द्रुत गत दोनों ही तीन ताल में निबद्ध है। कंटिन्यूइंग द सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर, यू विल लिसन राग रागेश्री।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सरोद वादन। कलाकार थे पंडित नरेंद्र नाथ धर, संगत कलाकार थे तबले पर राम कुमार मिश्रा। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सरोद रिसाइटल बाय पंडित नरेंद्र नाथ धर। द अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय राम कुमार मिश्रा ऑन द तबला। This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

Father,

நிரவலா.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित बलदेव राज वर्मा का गाया राग बैरागी.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present vocal rendition in rag Bairagi by Pandit Baldev Raj Verma.

0: अभी आप पंडित बलदेव राज वर्मा का गाया राग बैरागी सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए पंडित देवव्रत चौधरी का सितार पर बजाया राग भैरवी।
1: You were listening to a vocal rendition in Raag Bairagi by Pandit Baldev Raj Verma. Now listen to a sitar recital in Raag Bhairavi by Pandit Devrat Chaudhary.

0: अभी आप पंडित देवव्रत चौधरी का सितार पर बजा राग भैरवी सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: You were listening to a sitar recital in Rag Bhairavi by Pandit Devrat Chaudhary. This program is a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भक्ति संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संत एकनाथ महाराज की ये भक्ति रचना से, जिसे गाया है मनोहर सबनीस ने।

मनोहर सबनीस ने गाई संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना, अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अंजलि केलकर के स्वर में सुधांशु की यह भक्ति रचना।

सुधांशु की भक्ति रचना अभी आपने सुनी अंजलि केळकर के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं राम फाटक के स्वर में संत नामदेव महाराज की ये भक्ति रचना।

नामदेव महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी राम फाटक केसवर में। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत गोणाई की। आइए सुनते हैं विदुषी मंजरी आलेगांवकर के स्वर में। संगीतकार हैं रविंद्र खासनीस।

विदुषी मंजिरी आलेगावकर के स्वर में संत गोणाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी, जिसके संगीतकार थे रविंद्र खासनीस। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं शंकरनाथ बुआ पड़खेकर और सहकारियों के स्वर में ये भक्ति रचना।

शंकरनाथ बुआ पड़गेकर और सहकारियों के स्वर में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत तुकाराम महाराज की, जिसे गाया है कुमुद कुलकर्णी ने।

विधायकराव पटवर्धन ने कही संत तुलसीदास की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत तुकाराम महाराज की, जिसे गाया है धनश्री घाटे ने।

श्री घाटे के स्वर में संत तुकाराम महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं रघुवीर पांचाल और सहकारियों के स्वर में ये रचना।